0: जाते हैं, लेकिन सोया सॉस में सोडियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। लिहाजा हम सोया सॉस की मिकदार को निसफ करते हुए सेब का रस, सिरका और कद्दूकश की गई अदरक इस्तेमाल करेंगे। भरपूर महक के साथ इन मसालों से डिश का मज़ा दोबाला हो जाएगा और कम नमक से बनी एक बहुत फ़ायदेमंद डिश तैयार हो जाएगी।
1: एक छोटे प्याले में सोया सॉस और चीनी डालकर मिलाइए। अब इसमें सिरका, कद्दूकश की हुई अदरक और सेब का रस भी डालिए और यकजा करने के लिए अच्छी तरह हिलाएं। अब सॉस तैयार है, तो आइए मुर्गी को पकाने का आगाज करते हैं।
0: तमाम फिले एक साथ पकाने के लिए एक बड़ा फ्राई पैन इस्तेमाल कीजिए। पोटैटो स्टार्च में तेल जज्ब हो जाता है, लिहाजा अमूमी मिकदार से कुछ ज्यादा तेल इस्तेमाल कीजिए। जब फ्राई पैन गर्म हो जाए तो इसमें इस तरह फिले रखिए कि खाल वाला हिस्सा नीचे की जानिब हो।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK World जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। में स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना

0: में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन,
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत, मेरी बुनावट वैसी है तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा, क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पर छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी OTT भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज़्यादा मज़ा आता है आपको, और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या OTT का?
2: दोनों का है। OTT तो एक प्लेटफॉर्म है, सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए। लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल की हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ाव हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है। वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कलाओं परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
2: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है, जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में किकत है,
2: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं, और शब्द जो भी है, जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं। तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर OTT की बात करें, जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
2: हाँ, OTT मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि OTT जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा, और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूँकि सेंसर नहीं है, और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं, और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में, तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन, कहानियाँ, तो ऑफ कोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था, अभी लोम

0: भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
1: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है। दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
0: नहीं, मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है। बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है, और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK, जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
2: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ, जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चैरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
1: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। बाकी पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से मैं पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
2: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
1: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन झलकता है।
2: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है, और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहां के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
1: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नजारों के, खासतौर से वासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
2: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
1: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा। हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
2: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो इसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी। मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
1: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
2: और कामायनी सिंह को।
1: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं स्वीकार करें अपनी सखी शांगुला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन,
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत, मेरी बुनावट वैसी है तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आज दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज्यादा मजा आता है आपको, और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
2: दोनों का है। ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए। लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या, किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ाव हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है, वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कला परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म अपनाए हैं, उनका हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
2: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है, जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में ताकत है,
2: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं, और शब्द जो भी है, जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं, तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर ओटीटी की बात करें, जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
2: हाँ, ओटीटी मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि ओटीटी जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूंकि सेंसर नहीं है और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ, तो ऑफ कोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
0: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
2: नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है। बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
1: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चैरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
0: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। वाकई पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से मैं पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। ये संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
0: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन झलकता है।
1: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहाँ के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
0: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक

0: बाजारों के, खासतौर से बासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
1: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
0: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा? हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
1: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो इसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी। मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
0: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और कामायनी सिंह को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपकी मेजबान हैं खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खदीजा, दीवान खाना ऐसा गोशा जहाँ कुछ सुनने और कुछ कहने के लिए हम मिलकर बैठे।
1: जी बिल्कुल वसीमा, यही तो है हमारी महफिल दीवान खाना। इसमें शिरकत के लिए सामईन पहले खत लिखते थे, वही खत जो निस मुलाकात कहलाता है।
0: अरे बहन, अब आ गया ईमेल का जमाना। खत के बजाय ईमेल निस मुलाकात बन गई। नया दौर, नए तकाजे।
1: बिल्कुल, इन तकाजों को पूरा करने के लिए आज की इस महफिल में ईमेल के जरिए पैगाम, खत, तस्वीर या वीडियो भेजने का तरीका बताते हैं। सामईन हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर आए और फिर नीचे स्क्रॉल करके दीवान खाना की तस्वीर तलाश करें।
0: अच्छा अच्छा वो जो हमारी सब मेजबानों वाली तस्वीर है उस पर क्लिक करना है क्या?
1: जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अब नए खुलने वाले सफ़े पर दीवान खाना की थंबनेल यानी पहली तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब पैगामात यहाँ भेजें का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पर पहुँच जाएंगे।
0: अरे खदीजा, कोई आसान तरीका नहीं इस सफ़े पर आने का?
1: बिल्कुल है भाई, सर्च इंजन पर उर्दू में लिखें हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
0: सामिन यहाँ ये याद रखिए कि उर्दू रस्मुलखत में लिखना है आपने हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, उर्दू रस्मुलखत में लिखना है। और लेकिन अगर हमारे सामने कोई उर्दू नहीं लिख सकते तो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu के ज़रिए इस पे तशरीफ़ लाएं। और खदीजा, अब आगे बताइए कि आगे कहाँ जाना है।
1: जी, इस पेज पर तस्वीर के नीचे दिए गई हिदायत को पढ़ने के बाद फॉर्म की तरफ बढ़ें वाले लिंक पर क्लिक करें।
0: सामने लिंक है फॉर्म की तरफ बढ़ें।
1: जी हाँ, अगर पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुले तो पढ़कर कबूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करें।
0: एक और क्लिक।
1: हाँ जी, इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले। ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानिब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएगी। एक, आपका उर्फी नाम यानी निक नेम, दूसरा आपका ईमेल एड्रेस और तीसरा आपका पैगाम यानी मैसेज। पैगाम लिखने के बाद अगला सवाल ये होगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफ़ी है।
0: अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँ?
1: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक पहुंच जाएगा।
0: अच्छा खदीजा, मैंने खत लिखा है और मैं उसकी तस्वीर भेजना चाहती हूं या मुझे कोई वीडियो शेयर करनी है तो उसका तरीका बताएं ना।
1: जी, ऐसी सूरत में हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करें और आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर आप अपनी फाइल का उन्वान यानी टाइटल लिखें, उसके बाद बाएं जानिब वाले तीर पर क्लिक करें। अब अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें।
0: मुझे पता है सामिन, जब ऐसा करेंगे तो सक्सेस योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड का मैसेज आएगा, उसमें अपने नीचे कंफर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कंप्लीट पर क्लिक करना है ना खदीजा?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना है। इस क्लिक के बाद आपकी फाइल, आपका पैगाम या खत फौरन हम तक पहुँच जाएगा। हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अगर मुनासिब हुआ तो दीवान खाने के प्रोग्राम में शामिल भी कर देंगे।
0: और हम उन पैगामात के मुंतजिर रहेंगे जिन्हें भेजना अब खुल जा सिमसिम की तरह सिर्फ एक क्लिक से ही मुमकिन है।
1: वसीमा, इतनी बार क्लिक क्लिक कर रही हैं आप, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास कोई प्यारी सी बतख फिर रही है।
0: अरे खदीजा, मुझे बतख कह डाला सिर्फ एक क्लिक पे।
1: भाई हाँ, कहा तो सही लेकिन प्यारी भी साथ कहा। अच्छा, क्लिक की कमालात तो हैरान कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और मसनूई जहानत यानी AI के इस दौर में आप पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने के बारे में मालूमात ले सकते हैं।
0: सामिन, अभी खदीजा ने कहा IT, कहा AI, तो इसी मौजू पर जापान में लगी एक नुमाइश में शिरकत की दास्तान भी सुनानी है हमने आपको।
1: अरे वाह, तो समझ ना आइए, क्यों ना हम भी सुने। कब और कहाँ लगी ये नुमाइश?
0: अस्सलाम वालेकुम सामिन। इस साल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका की एयानत से पाकिस्तान की 12 आईटी कंपनियां जापान में एक नुमाइश के लिए तशरीफ़ लाई हैं, और यह नुमाइश जो हो रही है टोक्यो के बिग साइट में, एक पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी बूथ के सामने जापानी बोलते हुए यहां आने वाले लोगों को कुछ वजाहत कर रहे हैं। तो आइए उनकी बातें सुनते हैं।
2: मेरा नाम यासर अयाज है, मैं पाकिस्तान में नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेयरपर्सन हूँ और पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में प्रोफेसर भी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के शोबे में। इसके अलावा मेरी स्पिन ऑफ कंपनी भी है और उसको लेकर आज हम जापान में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि हम AI के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो जापान में इंट्रोड्यूस करवाएं।
0: तो आप तो बड़ी अच्छी तवक्कुआत लेके आए हैं जापान में, तो क्या आपको लगता है आपके बूथ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और किस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं वो लोग?
2: हमें बहुत सारी अच्छी लीड्स मिली हैं और जापानी लोगों का, क्योंकि एशिया है और पाकिस्तान का भी लोगों के जो ट्रेंड्स हैं वो जापानी लोगों के ट्रेंड से काफ़ी मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले जो कल बड़ी हमें एक लीड मिली वो तो थी हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में बुद्धिस्ट की बहुत हेरिटेज है और बुद्धिस्ट की बहुत सारी हेरिटेज साइट्स को रिक्रिएट करते हैं। मसलन ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान में जो टेक्सिला के एरिए में धर्मराजिका स्टूपा है, हमारे पास जूलियान की मोनास्ट्री है, बहुत सारे जो लॉस्ट हेरिटेज है उसको हम रिक्रिएट करते हैं ग्राफिक्स में। तो इनको फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स में रिक्रिएट करके जापानीज हेरिटेज को भी और पाकिस्तान की ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को हम जापान के म्यूजियम्स में शोकेस कर सकते हैं। इस पर हमारी जापान के कुछ म्यूजियम से मीटिंग भी हुई है। इसके अलावा हम जापान में बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ की जुनतेंदो यूनिवर्सिटी के साथ भी और मेडिकल प्रोडक्ट्स में। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम इनको दिखाया है कि हमने पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और मजीद प्रोजेक्ट हम साइन अप कर सकते हैं मेडिकल लोगों के लिए। तो इसमें फ्रेल्टी असेसमेंट है कि जो बुज़ुर्ग लोग जापान में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, तो उनकी फ़िज़िकल फ्रेल्टी को मैयर करना कि उनके कौन से मसल्स कमज़ोर हैं, कौन से मसल ताकतवर हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि उनको किस किस्म की फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हमारे पास एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस है कि हम लोकल AI डिप्लॉय करके भी कन्फिगर करते हैं, जो कि एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी है।
0: बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी वजाहत की इन्होंने। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में IT के कौन से शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है? 4-5 शोबों का तो आपने जिक्र कर दिया, पर इनमें से सबसे जो ग्रोथ वाला है, जो सबसे ज़्यादा फ़रोग पाने वाला, सबसे ज़्यादा तरक्की वाला, वो कौन सा शोबा है?
2: आई थिंक इसमें तो कोई डाउट इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाने वाला शोबा AI का है इस वक्त IT के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और कई सर्वेज ने ये इंडिकेट किया है कि दुनिया में 72% तक अब कंपनियाँ अपने मेन प्रोडक्ट को AI में

0: बदल रही हैं, जो उनके मेन प्रोडक्ट जिस भी डायरेक्शन में है उनको वो एआई के प्रोडक्ट में बदलना चाहती हैं, जिस तरह जिसमें कई कंपनियों के नाम हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है आईओटी, आईओटी अराउंड 46% पे जाता है जिसमें लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है और नंबर ऑफ अदर जो एआई के इसमें आते हैं। और आपको मीडियम के सर्वेज में, मैकेंजी के सर्वे में, मुख्तलिफ सर्वेज में आपको आइडेंटिफाइड ये फील्ड्स मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शोभा, जो आपने सवाल पूछा, वो विदाउट डाउट डेटा और स्टेटिस्टिक्स ही कहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है इस वक्त, और इसमें जापानी कंपनियों को भी बहुत इंटरेस्ट है।
1: सम इन पाकिस्तानी बूथ में एक कंपनी के सामने जापानी साहब कुछ मालूम ले रहे हैं, तो आइए उनसे कुछ बातें पूछते
2: हैं।
3: हमारी कंपनी में हम इस वक्त ड्रोन के कारोबार पर काम कर रहे हैं और रोबोटिक का नया कारोबार शुरू करने पर भी गौर कर रहे हैं। मैं यहाँ ऐसी सर्विस के हवाले से रिसर्च के लिए आया हूँ। सच पूछें तो मेरे जहन में पाकिस्तान का कोई ज़्यादा वाज़ह तसव्वुर नहीं था, लेकिन जब बूथ पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ओह, पाकिस्तान भी नुमाइश में हिस्सा ले रहा है। मैं ये जानना चाहता था कि वो किस किस्म की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। मैंने वाकई उनका जोश व जज्बा महसूस किया। मुझे ये भी शिद्दत से महसूस हुआ कि जापान के लिए उनके दोस्ताना और मुस्बत जज्बात हैं।
1: जी सामिन, इस बूथ पे पाकिस्तानी नौजवान बड़े वलवला खेस किस्म के, बड़ी अच्छी तरह किसी जापानी लोगों को यहाँ आने वालों को समझा रहे हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी कंपनी से आए हैं और क्या सोच के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेर है और हम लाहौर से आए हैं। अविलाइक्स टेक्नोलॉजीज हमारी कंपनी है, हम लोग एआई की ऑटोमेशन पे काम करते हैं और हम जापान के अंदर न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एआई से रिलेटेड हैं, जैसे कि एजेंटिक एआई में एआई वॉइस जापान में लोगों की ज़रूरत है और इसमें जो है वो यंगर पॉपुलेशन थोड़ा कम है जो हमने रिसर्च किया, तो इनको लोगों की ज़रूरत है। हम ये चाह रहे हैं कि ये एआई जो है उस ज़रूरत को पूरा करे।
1: ज़्यादातर किस किस्म के लोग आए हैं अभी तक आपके बूथ पे?
4: हम लोगों के पास एआई से रिलेटेड लोग ज़्यादा ही आए हैं, तो उससे मुंसलिक लोगों को ही हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मुख्तलिफ कारोबारी ज़िंदगी के लोग हैं जिसमें जो है वो कुछ ऐसे हेल्थ से रिलेटेड भी हैं जैसे कि, और कुछ गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाले लोग भी आए हैं कि वो कैसे इसमें अपने कामों को, जैसे कि लोगों को निकालना, रखना, उनकी वैल्यूएशन या एम्प्लॉय की विजिबिलिटी के ऊपर चेक और बाकी चीज़ें इस तरह की वो जानने के लिए। और हमने भी यही ऑफर की है कि अगर आप कोई अपने हिसाब से जापानीज़ नॉर्म्स के हिसाब से उसमें कुछ बदलवाना चाहते हैं या कुछ नया बनवाना चाहते हैं तो वो हम आपको बना के दे सकते हैं। जब मैंने उन्हें बताया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी 25 करोड़ की आबादी में से तकरीबन जो है वो 15 से 18 करोड़ के करीब करीब जो है वो 30 साल से कम है, तो इसलिए वो काफ़ी इस पे खुश भी हुए। और मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है टेक, और इसमें आईटी में हमारे बहुत बच्चे जो हैं वो आगे आ रहे हैं, सो वी कैन सर्व अ गुड, हम बहुत अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, मुहैया कर सकते हैं। और अब जैसे कि एआई की मदद से जो एक बहुत बड़ा मसला था ज़ुबान का जापानीज़, तो हमने जो एआई बनाया है वो बहुत अच्छी जापानीज़ बोलता है और जवाब भी देता है।
1: एक और नौजवान के पास हम आए हैं, ये भी पाकिस्तान के किसी कंपनी के एक बूथ पे खड़े हैं, तो आइए इनका तारुफ इनसे लेते हैं, इनसे पूछते हैं बाकी तफसीलात के ये क्या करने आए हैं जहाँ।
5: जी थैंक यू सो मच, मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं फाउंडर हूँ ब्राउन टेक का। तो अभी हम जापान में अपनी एक ये प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि एक एआई रिसेप्शनिस्ट है। एआई रिसेप्शनिस्ट क्या करता है कि ये आपकी कंपनी के फ़ोन नंबर और बिज़नेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और लेट से आपका बिज़नेस कॉल्स लेता है, इनबाउंड्स आती हैं, तो ये आपकी सारी इनबाउंड्स को कंट्रोल करता है। मीन्स कि अगर आपने कस्टमर्स ने बुकिंग्स करनी है या अपॉइंटमेंट्स करनी है या कंसल्टेशन की वो जो मीटिंग्स होती हैं वो करनी है, सो ये CRM के साथ कनेक्टेड है। और ये क्या करता है कि आपकी जितनी भी बुकिंग्स और अपॉइंटमेंट्स हैं उस CRM में डालता जाता है और आपके कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करता जाता है, ताकि आपको एक मैनुअल जो ह्यूमन है उसको ना बैठाना पड़े उसके काम को करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपका सारा काम ऑटोमेट हो जाता है, 24/7 ये चीज़ काम करती है, आपका बिजनेस ओपन है या नहीं, लेकिन आपकी लीड्स, आपकी बुकिंग्स, आपके अपॉइंटमेंट्स वो चल रही होती
1: है। वाह क्या जबरदस्त जापानी बोल रही है, बिल्कुल बामहावरा जापानी बोल रही है ये तो।
6: अरे वसीमा, आपके साथ बामावरा जापानी कौन बोल रही थी, आपने बताया ही नहीं।
7: अरे ये कोई इंसान नहीं, पाकिस्तानी कंपनी का तैयार करदा चैटबॉट है।
6: अच्छा अच्छा, सामिन आपको बताती चलूं, वो कह रही थी आदाब,

0: चाहता है। हमने यहाँ आने वाले जापानियों से बात की, पाकिस्तानी बूथ पे जिन पाकिस्तानियों ने लगाए हुए थे अपने स्टॉल, उन सारों से बात की। मुझे लगता है पाकिस्तान का जापान का तआवुन जो है होगा, उसका मुस्तकबिल बड़ा ही ताबनाक लगता है। आपका क्या ख्याल है सामिन? उम्मीद है तआवुन का ये सिलसिला जारी रहेगा। NHK वर्ल्ड जापान उर्दू सर्विस टोक्यो से वसीमा आबिद।
1: वाह भाई, इस रिपोर्ट को सुनकर मुझे लग रहा है कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख।
2: सूरज उभर रहा है और मैं कहूंगी खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख। और सामिन, अब मौसीकी का वक्त है। हमारे स्टाफ ने पाक जापान दोस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए गीत मुंतखब किया है, बडीज यानी दोस्त। इसे पेश करने वाला ग्रुप है साकुराजा का 46। सामिन, आप ये गीत सुनते रहिए और खदीजा, हम आप सामिन से कहेंगे कि हमें इजाजत दीजिए।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत, मेरी बुनावट वैसी है तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट

0: में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सहजता भी ऐसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
1: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
0: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आज दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
1: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इंदिनो का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
0: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा, क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है। और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है। उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में, कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं। तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने खराब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं भी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी। हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
1: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज्यादा मजा आता है आपको, और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
0: दोनों का है। ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है। वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है, कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए। लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
1: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या, किसको तवज्जो देते हैं?
0: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ा हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है। वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है, तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
1: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
0: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है। एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कला परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
1: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा, अटल जी के आपने जो मैनरिज्म अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
0: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है। जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
1: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में ताकत है,
0: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं और शब्द जो भी है, जो हैं वो अपमान भी दिलवा देते हैं। तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
1: पर OTT की बात करें, जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
0: हाँ, OTT मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि OTT जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा, और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूँकि सेंसर नहीं है और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बंद कर दीजिए।
1: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं, और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ, तो ऑफकोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था, अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
1: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
0: नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है, बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है, और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम, तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
2: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चेरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
1: मंजुश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। बाकी पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से मैं पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
2: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
1: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन झलकता है।
2: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहाँ के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
1: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नजारों के खासतौर से वासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
2: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
1: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा? हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
2: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो इसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी। मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
1: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
2: और कामायनी सिंह को
3: सायोनारा, नमस्कार।